0: इनसे कहो मुझे उस वक्त की कोई खबर न थी जब मलाए आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ, इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। जो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजुज तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को तुझ से और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मौसम में मुख्तलिफ जो फल हैं वो बनाए हैं और उन फलों में खास ताकत है। जैसे गर्मी का मौसम है, सर्दी है, खजां है, बहार है, हर मौसम में फल मखसूस तौर पर जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक गज़ाइयत फराहम करते हैं। जैसे गर्मियों में वाटरमेलन, खरबूजा है, कोकम्बर है, वो जिस्म को ठंडक और पानी की कमी को दूर करते हैं। सर्दियों में माल्टा, कीनो, अमरूद यानी सिट्रस फ्रूट्स जो हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो वो हमें नज़ला और ज़ुकाम से बचाते हैं। इसी तरह से खजां के जो फल हैं, उस जो सेब है, अनार है, तो वो खून साफ करने वाले हैं और दिल के लिए बहुत मुफीद हैं। बाहर के फल हैं आम, पपीता और केला, जो कि तवानाई को ज़्यादा करते हैं और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। गर्मियों में तरबूज ना सिर्फ पानी की कमी पूरी करता है बल्कि जिस्म में हरारत भी कम करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद के लिए बेहद मुफीद है। अब हमें करना यह है कि हम जूस की बजाय पूरा फल खा लें ताकि फाइबर भी मिले। और कोई भी फ्रूट आप ले रहे हैं तो हमेशा पहले उसे वॉश कीजिए, फिर आप उसे खा लीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स में रोजाना एक फ्रूट जरूर रखिए। इसी तरह जो फल हैं हर मौसम में, तो हमेशा अपने असल मौसम में उसे ज़रूर खाइए। मुख्तलिफ रंगों के फल खाइए ताकि विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। सीजनल फ्रूट्स जो हैं यानी मौसम फल, कुदरत की बेहतरीन दवा हैं। याद रखिए, हर मौसम के फल खाइए और फिर सेहत के बहुत से मसाइल, बहुत सी बीमारियों से आप बच सकेंगे और इस तरह हमारी तवानाई भी ज्यादा होती चली जाएगी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक सुबह जब सूरज अपनी रोशनी से आसमान को रंगीन रंगों से सजा रहा था, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम अली था, एक लंबे साहिल पर चल रहा था। सूरज की रोशनी नारंगी और गुलाबी रंगों में फैल गई थी और समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता रेत के साथ अपना रास्ता बना रही थी। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता समंदर की लहरें पीछे हटती चली गईं और रेत पर हर जगह बहुत सारा कचरा और वेस्ट सामान फैला हुआ था। हर तरफ प्लास्टिक की बॉटल्स, कूड़ा, कचरा और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। अली ने देखा कि कचरा हर जगह बिखरा हुआ था। उसने अपने दिल में सोचा कि उसे ये सब कुछ साफ करना होगा। ये सोचकर उसने वहाँ की सफाई शुरू कर दी। अली ने एक बॉटल उठाई और उसे डस्टबिन में डाल दिया, फिर दूसरी बॉटल उठाई और उसे भी डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर के किनारे पर चलता रहा। एक कचरा उठाता और उसे डस्टबिन में डालता, फिर दूसरा उठाता, फिर उसे डस्टबिन में डालता। अली की आंखों में एक डिटर्मिनेशन थी। वो हर एक चीज को ढंग से उठाता और उसे डस्टबिन में डाल देता। कभी कभी वो थोड़ा थक भी जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था। अली को ये बात पता थी कि अगर वो छोटी से छोटी मदद भी करेगा तो ये बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगी। काफी वक्त गुजर गया और एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ी दूर से अली को देखे जा रहा था उसके पास आया। अली को देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी थी और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए अली से कहने लगा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? अली ने अपना काम रोका और उसकी तरफ ऊपर देखा और जवाब दिया, मैं अपनी इस एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारे कचरे की सफाई कर रहा हूँ ताकि हमारा माहौल साफ रह सके। बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और उसने अपने हाथ से समंदर की तरफ इशारा किया, बेटा देखो यहाँ हर जगह कचरा फैला हुआ है। समंदर का किनारा इतना लंबा है और यहाँ हजारों चीजें पड़ी हुई हैं। तुम कैसे इन सब की सफाई कर सकते हो? तुम्हारे इस छोटे से काम से क्या फर्क पड़ेगा? अली ने अपनी पूरी तवज्जो से उस आदमी की बात सुनी, फिर वो आहिस्ता से झुका और एक और प्लास्टिक की बोतल उठाई और उसे डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ये फर्क पड़ेगा अंकल। उस बूढ़े आदमी ने अली की तरफ गौर से देखा और काफी देर तक चुप करके देखता रहा और अली को देखते हुए उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर थोड़ी देर बाद एक मुस्कुराहट आई। वो सोच रहा था कि अली का जवाब कितना गहरा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी और उसने भी अपने आप से कहा, अगर ये छोटा सा लड़का अपने तरीके से कचरा सफाई कर रहा है तो मुझे भी मदद कर ही देनी चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने भी अली की मदद करना शुरू कर दी और एक एक करके प्लास्टिक बॉटल उठाना शुरू कर दी। फिर वो भी अली के साथ साथ सफाई करते हुए चलने लगा। उसने एक बॉटल उठाई और उसे डस्टबिन में डाल दिया। अली और वो बूढ़ा आदमी मिलकर छोटा छोटा कचरा उठाने लगे। अली ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आपने देखा, अब हम दोनों काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे तो ये सारा कचरा बहुत जल्द साफ हो जाएगा। आदमी ने भी आगे से अली को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोटी छोटी मदद से ही बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो मुझे लगता है समंदर का ये किनारा तो साफ हो ही जाएगा। अली और बूढ़ा आदमी मिलकर कचरा साफ करते गए। उन्होंने देखा कि जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो सफाई जल्दी होती जा रही थी।

आहिस्ता आहिस्ता समंदर का किनारा पूरी तरह से साफ हो गया। अली को लग रहा था कि उसकी छोटी सी मदद ने सच में कोई बड़ा फर्क दिखाया है। जब वो सफाई का काम पूरा कर चुके तो वो बूढ़ा आदमी अली की तरफ देखकर बोला, बेटा तुमने तो मुझे एक बहुत जरूरी सबक दे दिया है। मैंने सोचा था कि इतना सारा कचरा साफ करना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने मुझे ये समझाया कि छोटी छोटी मदद के जरिए ही तो हम जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अली मुस्कुराया और कहने लगा, जी हाँ अंकल, हर छोटी मदद की अपनी अहमियत होती है। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका असर जरूर होता है। बूढ़े आदमी ने अली का अपने दिल से शुक्र अदा किया। अली का चेहरा खुशी से चमक रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया था। तो दोस्तों, याद रखें कि जो छोटी छोटी मदद हम एक दूसरे की करते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी एक छोटी सी मदद से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जब हम किसी की छोटी सी मदद भी करते हैं तो वो हमारे आसपास की दुनिया में बड़ा फर्क लाती है। हर काम जो हम अच्छे दिल से करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दूसरों के लिए बहुत कीमती होता है। हमेशा याद रखें कि हर पॉजिटिव मदद का अपना असर होता है।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं नाजिया आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई टर्म लेकर आई हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने यह टर्म पहले से सुन रखी हो, कुछ लोगों के लिए आज ये टर्म बिल्कुल नई हो। तो आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज की। देखो, इकोनॉमिक टर्म्स का समझना हर एक इंसान के लिए बेहद जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो बिजनेस या फिर फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं। आज हम बात करेंगे टर्म एब्सोल्यूट एडवांटेज की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में बड़ी अहमियत रखता है। वेल, एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि किसी मुल्क या फिर शख्स के पास किसी माल या सर्विस को दूसरे मुल्कों के लोगों के

की सलाहियत। इसका मतलब ये है कि अगर एक मुल्क किसी चीज को दूसरे मुल्क के मुकाबले में कम रिसोर्सेज या कम वक्त में प्रोड्यूस करता है तो उस मुल्क को एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क हैं। मानना क्या है, दोनों मुल्क हैं ही। पाकिस्तान को कॉटन उगाने का बहुत अच्छा तजुर्बा है और वो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कम वक्त में। मान लेते हैं पाकिस्तान एक टन कॉटन को सिर्फ 10 घंटे में उगाता है, जबकि वहीं इंडिया एक टन कॉटन को 15 घंटे में उगाता है। इस सूरत में पाकिस्तान को कॉटन के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज है। वहीं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। अगर हम राइस चावल की बात करें तो मान लीजिए इंडिया जो है वो चावल उगाने में बेहतर है और वो इसे सिर्फ 8 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को चावल उगाने में 12 घंटे लगते हैं। इस सूरत में इंडिया को राइस के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज है। दोस्तों, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ये टर्म जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन इसका मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि किसी मुल्क के पास किसी माल या सर्विस को प्रोड्यूस करने की बेहतर सलाहियत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज भी रखता हो। यानी मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तान कॉटन और राइस दोनों उगाता है, लेकिन कॉटन उगाने में उसकी सलाहियत ज्यादा है, तो वो कॉटन पर फोकस करेगा और राइस की प्रोडक्शन को इंडिया को दे देगा, जहां वो राइस ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से दोनों मुल्क अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा उठाकर ट्रेड कर सकते हैं। पर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का इस्तेमाल कैसे होता है? दोस्तों, एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अहमियत रखता है। जब मुल्क अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज का फायदा उठाकर ट्रेड करते हैं तो ये ना सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। मुल्क जब अपने रिसोर्सेज को उस चीज की प्रोडक्शन में लगाते हैं जिसमें उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तो वो ज्यादा इफिशियंट होते हैं। इससे उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमी की ग्रोथ को भी मदद मिलती है। वहीं पर इसके और भी ग्लोबल ट्रेड पर भी एडवांटेजेस देखे जाते हैं। आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। इस ट्रेड का मकसद ये होता है कि हर मुल्क अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज का फायदा उठाए। मिसाल के तौर पे, अगर एक मुल्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस करने में बेहतर है और दूसरा मुल्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो ये मुल्क अपने प्रोडक्ट का ट्रेड करते हैं। इस तरह से हर मुल्क अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और ज्यादा फायदा कमा सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि कंज्यूमर्स को बेहतर क्वालिटी और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यानी आप भी खुश है ना दोस्तों।

0: ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये न सिर्फ मुल्कों के लिए फायदेमंद है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा सिग्नल है। आखिर में ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज को समझने से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड और स्पेशलाइजेशन से इकोनॉमीज ग्रो करती हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हर एक इंसान के लिए समझना जरूरी भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस या इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं या रखने की सोच रहे। चलिए इस तरह से हम एब्सोल्यूट एडवांटेज के कॉन्सेप्ट को समझा सकेंगे और समझ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि किस तरह से दुनिया की इकोनॉमी को शेप किया जाए। वेल, फिलहाल मुझे ये उम्मीद है कि आज मैं आपको नई टर्म यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज को समझाने में कामयाब हुई हूँ। वेल, वापस आऊंगी तो एक और नई टर्म लेकर आऊंगी और उस पर बात होगी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह पर उन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, तवाज़ु इस्लाम की सबसे हसीन तालीमात में से है। इस्लाम हमें सिखाता है कि तकब्बुर और गुरूर बंदे को जलील करता है, जबकि इंकसारी और आजिज़ी बंदे को अल्लाह के नज़दीक भी बुलंद करती है और लोगों के दिलों में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, सदका देने से माल कम नहीं होता, जो माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है, और जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। दोस्तों, ये कैसी खूबसूरत तालीम है, बड़ा छोटे पर रहम करे, छोटा बड़े का एहतराम करे, हम उम्र एक दूसरे को भाई समझें। यूं न तकब्बुर बाकी रहता है न हसद, बल्कि मोहब्बत एहतराम और भाईचारा परवान चढ़ता है। सामईन किराम, आज की सुन्नत थी तवाज़ु। इस तवाज़ु का नतीजा दुनिया में भी दिखता है, आखिरत में भी सवाब है। इस तरह हर मुसलमान को अपने रवैयों में इंकिसारी अपनानी चाहिए, क्योंकि यही वो अखलाक है जो उम्मत को जोड़ता है और माशरे को सुकून बख्शता है। आइए हम अपनी जिंदगी से तकब्बुर, गुरूर और फख्र को निकाल कर आजिजी, इंकिसारी और मोहब्बत को अपनाएं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से 2 नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले, यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं।

मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, जिसमें आज मैं बात करूंगा सनत जयसूर्या के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम इन ओडीआई हिस्ट्री। सनत जयसूर्या का नाम क्रिकेट के हिस्ट्री में हमेशा एक लेजेंड की शक्ल में याद किया जाएगा। मैं इस बात को मजीद रीजंस के साथ थोड़ी देर में वाजे करूंगा। फिलहाल उनके बचपन के बारे में अगर बात करूं तो जयसूर्या 30 जून 1969 को सदर्न श्रीलंका के शहर मतारा में पैदा हुए। उनके वालदैन का नाम दुस्तन और ब्रीडा जयसूर्या था। अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करूं तो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट राइट फ्रॉम द यू नो अर्ली ईयर्स, एंड जब वो कॉलेज में पहुंचे, उनका कॉलेज का नाम मैं बता दूं, सेंट सर्वेटियस कॉलेज मतारा में ही था, और जहां उनकी क्रिकेट की सलाहियत को प्रिंसिपल जीएल गलापति और क्रिकेट कोच लियोनेल वागा सिंगे ने उभारा। आई मीन हिडन टैलेंट ना कभी कभी छुपता नहीं है, यू नो, एंड द प्रिंसिपल एंड द कोच दे नोटिस द बंडल ऑफ टैलेंट इन सनत जयसूर्या। 1988 में जयसूर्या ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पहले आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका की नुमाइंदगी की, एंड इसके चंद महीनों बाद उन्हें श्रीलंका बी टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे के लिए सेलेक्ट किया गया, जहां उन्होंने दो इम्पोर्टेंट डबल सेंचुरीज बनाई। इसी शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें 1989-1990 के सीरीज ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। एंड क्यों ना करें, बिकॉज ही वॉज अ वंडर बॉय राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। और जयसूर्या ने अपना वन डे इंटरनेशनल डेब्यू 26 दिसंबर 1989 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, और फरवरी 1991 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में अपना टेस्ट डेब्यू किया। लेकिन सनत जयसूर्या इज मोर फेमस फॉर हिज एक्सप्लॉइट्स इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। उन्होंने सच में ओडीआई क्रिकेट को एक नया डायरेक्शन दिया था, खासकर उस वक्त जब मॉडर्न डे अटैकिंग क्रिकेट की शुरुआत हो रही थी, और जयसूर्या ने अपने एक्सप्लोजिव बैटिंग से नॉट जस्ट श्रीलंका बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि ओडीआई क्रिकेट को किस तरह से खेला जाए जिसमें एग्रेशन और डोमिनेंस हो।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए इजी लाइफ हैक्स लेकर आई हूँ। और आज का सबसे पहला लाइफ हैक है, हिचकी यानी हिकअप से अगर आप परेशान हैं तो क्या करें। वेल, हिचकियाँ रुकने का जब नाम नहीं लेती तो हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, या फिर हम वो सारे नाम लेने लगते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो कोई हमें याद कर रहा होगा लेकिन इससे भी कई बार फर्क नहीं पड़ता। तो बस क्या करना है, एक चम्मच पीनट बटर लेना है, उसे खा लेना है। एंड ट्रस्ट मी, ये काम करता है, पता नहीं कैसे बट हिचकी गायब हो जाती है। सो ट्राई करके देखो। दूसरा हैक, ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के लिए है कि एग्जाम में सब याद रखना है तो एक अनोखे इरेजर का इस्तेमाल करना है। कैसे, चलो आपको बताते हैं। तो हमारी स्मेल का मेमोरी से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, और अगर एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो एक अजीब सी स्मेल वाला इरेजर खरीद लो, मतलब जिसमें पिकल की स्मेल हो या कॉफी का सेंट हो या कोई भी सेंट जो आपको पसंद हो। फिर जब भी कुछ याद करने की कोशिश करो उसे सूंघ लो। एग्जाम में वही इरेजर ले जाओ और जब कोई आंसर याद ना आए तो उस इरेजर को सूंघ लो एंड मेमोरी झट से ट्रिगर हो जाएगी। हाँ जनाब, आजमाया हुआ फंडा है इसलिए आपको बता रहे हैं, तो जरूर ट्राई करना। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum listeners, aap sun rahe hain Green Path, ek aisi journey jahan hum baat karte hain environment ki behtri, sustainable lifestyle aur Qatar ke vision 2030 ke goals ki roshni mein. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे-छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम इको फ्रेंडली ब्यूटी रूटीन्स के बारे में बात करेंगे। आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रूटीन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं ताकि स्किन केयर के साथ प्लैनेट का भी ख्याल रखा जा सके। केमिकल फ्री और नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कॉटन पैड्स को प्लास्टिक बेस्ड अल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। रीयूजेबल मेकअप रिमूवर पैड्स यूज करें। अपने घर पर नेचुरल इंग्रेडिएंट से DIY ब्यूटी ट्रीटमेंट्स बनाएं, जैसे हनी, टर्मरिक और एलोवेरा का यूज। ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त पैकेजिंग का भी ध्यान रखें और वो प्रोडक्ट्स यूज करें जो सस्टेनेबल पैकेजिंग में हो। इको फ्रेंडली ब्यूटी आपको अच्छी स्किन देने के साथ साथ एनवायरमेंट को भी बेनिफिट देती है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

ये नहीं कह सकेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। समझ कराम, कुरान हमें एक हैरत अंगेज मंजर भी दिखाता है, क़यामत के दिन इंसान के अपने ही आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। हाँ, जबान बोलेगी, हाथ कहेंगे हाँ इन्हीं हाथों से काम किया गया था, आंखें कहेंगी हमने यही मनाजिर देखे थे, कान कहेंगे हमने यही बातें सुनी थी, यहाँ तक कि ज़मीन भी गवाही देगी कि उस पर क्या कुछ हुआ था। सोचिए सामने किराम, जिस जिस्म को हम अपनी मिल्कियत समझते हैं वही क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सच बोलने लगेगा। इसीलिए इंसान अपने आज़ा को गुनाहों में इस्तेमाल न करे, क्योंकि यही आज़ा कल उसके खिलाफ गवाह बनेंगे। सामने किराम, ये तसव्वुर हमारे अंदर एक ज़बरदस्त एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। जब कोई इंसान तन्हाई में गुनाह करता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईमान वाला जानता है कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मेरा अपना जिस्म भी सब कुछ महफूज कर रहा है। इसलिए मोमिन लोगों से नहीं बल्कि असल में तो वो अपने रब से हया करता है। क़यामत के दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी उठाए जाएंगे। इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह की अदालत इतनी कामिल है कि अगर एक जानवर ने दूसरे पर जुल्म किया होगा तो उसका भी इंसाफ होगा। फिर इंसान क्यों समझे कि वो बगैर हिसाब के बच जाएगा, और यही अल्लाह के अदल की शान है। समझ कराम, फिर कुरान हमें अल्लाह की माइयत यानी अल्लाह के साथ होने के मफहूम की तरफ भी रहनुमाई देता है। अल्लाह हर जगह अपने इल्म के साथ मौजूद है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। लेकिन कुरान एक और माइयत का भी जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और फरमाया इन्नल्लाह मअल्मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। इन्हें अल्लाह के इल्म तो हर एक के साथ है, लेकिन उसकी ख़ास मदद रहमत और नुसरत अहल ईमान अहल सब्र और अहल तक्वा के साथ होती है। ये मोमिन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज साइंस भी हमें बता रही है कि कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। माहिरीन फलकियात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करते हैं, यानी वो खुद तस्लीम करते हैं कि कायनात का बेशतर हिस्सा हमारी निगाहों से ओझल है। कुरान तो 1400 साल पहले हमें बता चुका था कि सिर्फ ये मादी दुनिया ही हकीकत नहीं बल्कि एक आलम गैब भी है। फरिश्ते हैं, अर्श है, कुर्सी है, लोहे महफूज है, जन्नत है, जहन्नम है, ये सब हकीकत है अगरचे हमारी आंखें इन्हें इस दुनिया में नहीं देख सकती। समझ कराम, मोमिन की आज़मत यही है कि वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों पर ईमान नहीं रखता बल्कि अल्लाह के बताए हुए गैबों पर भी ईमान रखता है। अहादीस में आता है कि अल्लाह के अर्श और कुर्सी की वसअत का तसव्वुर इंसानी अक्ल से कहीं बढ़कर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसालें बयान फरमाई जिनसे हमें सिर्फ अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह की मखलूक कितनी अजीम है। लेकिन उलमा ने हमेशा ये बात वाज़ह की है कि इन सिफात की कैफियत हमें मालूम नहीं। हम न अल्लाह को मखलूक पर कयास करते हैं और न उसकी सिफात को इंसानी सिफात जैसा समझते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह की सिफात बरहक हैं, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाई हम वैसा ही ईमान रखते हैं, लेकिन कैसे उसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए जब बंदा अल्लाह की अजमत पर गौर करता है तो आखिरकार उसका दिल एक ही जुमला कहने पर मजबूर हो जाता है, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह हर उस चीज़ से बड़ा है जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारी अक्ल महदूद है, हमारी निगाह महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, लेकिन अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म और अल्लाह की अजमत हर हद से बुलंद है। इसीलिए बंदा आखिरकार सजदे में गिर जाता है, क्योंकि सजदा ही वही मकाम है जहां अक्ल आजिज़ हो जाती है और दिल अपने रब के सामने झुक जाता है। सामने किराम, जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उसे जन्नत, फरिश्तों, अर्श, कुर्सी और आखिरत के बेशुमार मनाजिर मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का एक नहायत खूबसूरत मकूला है कि दुनिया और आखिरत की बहुत सी चीज़ों के नाम तो एक जैसे हैं लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।

0: और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हल्के के इख्तिताई मरहले तक हम पहुंच चुके हैं और इस इख्तिताई मरहले में हमें कैसे मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि दुनिया मुस्तकिल क़ियामगाह नहीं बल्कि एक मुख्तसर सफ़र है। ये अहम नहीं कि हमने कितने साल ज़िंदगी गुजारी बल्कि अहम तो ये है कि हमने ज़िंदगी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ खाने, कमाने, खेलने और दुनियावी मसरूफियात में खो जाने के लिए पैदा नहीं किया बल्कि अपनी मारिफत, इबादत और आखिरत की तैयारी के लिए पैदा फरमाया है। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यही सबक देता है। जब उन्होंने अल्लाह की कुदरत के आसार देखे तो उनका मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं था बल्कि दिल का यकीन बढ़ाना था। उन्होंने अर्ज किया, رب ارني كيف تحيي الموتى الله تعالى فرمایا ولم تؤمن انہوں نے عرض کیا بلا ولكن ليطمئن قلبي یعنی ایمان تو موجود تھا مگر دل مزید اطمینان چاہتا تھا۔ یہی مومن کا سفر ہے۔ ایسا یقین حاصل کرنا ضروری ہے جو زندگی بدل دے۔ سامعین کرام، آج انسان ایک نئی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ पहले इंसान हकीकत पर रहता था, अब बहुत से लोग वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। वर्चुअल दोस्ती, वर्चुअल मुलाकातें, वर्चुअल तफरी, वर्चुअल शोहरत और कभी कभी तो इंसान हकीकत से ज़्यादा इस मस्नूई दुनिया में जीना शुरू कर देता है। कुरान इंसान को हकीकत की तरफ बुलाता है। कुरान कहता है कि ज़मीन व आसमान में गौर करो, अपनी तख्लीक में गौर करो, अपने रब की निशानियों को देखो, यानी हकीकत को पहचानो, धोखे में न रहो। अगर इंसान सारी ज़िंदगी स्क्रीनों में गुम रहा लेकिन अपने रब को न पहचान सका तो उसने ज़िंदगी का असल मकसद खो दिया है। सामने किराम, अवलिया और उलमा हमेशा एक बात कहते आए हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। खोया हुआ माल वापस आ सकता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कुरान कसम खाता है, वलासर, जमाने की कसम। क्यों? क्योंकि इंसान का असल सरमाया यही वक्त है। अफसोस यह है कि आज इंसान घंटों ऐसी चीज़ों में गुजार देता है जिनका न दुनिया में फ़ायदा है न आखिरत में। इस्लाम तफरी से मना नहीं करता, आराम से मना नहीं करता, लेकिन फजूल की ज़िंदगी से ज़रूर रोकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, सेहत और फरागत। आज अगर हम अपने एक दिन का जायज़ा लें तो शायद हमें खुद अंदाज़ा हो जाए कि कितना वक्त अल्लाह की याद में गुजरा और कितना वक्त बेमकसद चीज़ों में। सामने किराम, कुरान हमें दिल की नरमी भी सिखाता है। एक मोमिन सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के दुख को भी महसूस करता है। अगर दुनिया में कहीं जुल्म हो रहा हो, किसी भूखे के पास खाना न हो, किसी यतीम का सहारा न हो तो एक मोमिन का दिल बेचैन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही इस्लामी क़ुव्वत है, यही ईमान की अलामत है। सामने किराम, बचपन में इंसान खेलता है, यही फितरी बात है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी खेल ही में गुजर जाए तो फिर इंसान अपनी असल जिम्मेदारी भूल जाता है। कुरान हमें बार बार गौर फिक्र, तदब्बुर और अमल की दावत देता है। ज़िंदगी सिर्फ खेल नहीं, सिर्फ मुकाबला नहीं, सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है और उस इम्तिहान का नतीजा हमेशा की कामयाबी या हमेशा की नाकामी हो सकता है। सामने किराम, बाज़ अहले इल्म कहते थे कि दुनिया में एक ऐसी तन्हाई भी होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान लोगों से नफरत करे, किनारा किसी इख्तियार कर ले, बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी इंसान शोर से निकलकर खामोशी में अपने रब से ताल्लुक मजबूत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत से पहले गार हिरा में तन्हाई

Assalamu alaikum and good morning Qatar. Aap sun rahe hain Summer Morning with RJ Mahavishan aur main aapke saath maujood hoon. 6:02 ho gaye hain aur mera aur aapka saath aap jante hain ki 9 baje tak rehne wala hai aur bas shuruaat ho gayi hai inshaallah aaj naye hafte ki. और अब ये वाला हफ्ता है वैसे मेरा और उसके बाद मेरी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं तो वो बिल्कुल जो काउंटडाउन चल रहा होता है ना कि एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन वो वाला सिलसिला शुरू हो चुका है मेरा वाला फिर उसके बाद छुट्टियां होंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब कुछ खैर रखे सारे मामला बिल्कुल खैर के रखे सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सब कुछ सारी दुनिया के मामला ठीक ठाक चलते रहें और अमन रहे भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि अमन नाफिज़ रहे दुनिया में हर जगह और अल्लाह ताला हम सब लोगों को हर जगह पर हर मामले में इस मतलब जो है ना इस चीज़ की तौफीक भी दे कि हम अमन कायम करने वाले बने. खैर जी आज मैं आपसे जो तहरीर शेयर करने वाली हूँ उसके हवाले से भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दी चलूँ कि आप

आप अगर कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और इसके साथ ही साथ 6622107 पे आप हमें मैसेज कर सकेंगे. ठीक है, तो मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, बताइएगा आपके हफ्ते का खास कैसा हुआ, आज की सुबह का खास कैसा हुआ, ये जो बीच के दो दिन गुजरे थे वो छुट्टी आपकी थी या नहीं थी, दोनों ही सूरतों में कैसे गुजरे, अच्छे गुजरे, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे ही गुजरे होंगे, कुछ अच्छा ही किया होगा आपने, और अगर कुछ नहीं तो रेस्ट तो किया होगा. तो इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे कि क्या सिलसिला रहता है, क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अपनी तहरीर की तरफ, फिर हम चलेंगे असकार की जानिब और फिर हम शो का आगाज़ करेंगे.

सुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाअत फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

0: मोहम्मद। अज़कार सुबह के इस खुसूसी सेगमेंट के इख्तिताम पर आप सबको एफएम 107 की पूरी टीम की जानिब से सुबह बखैर। अल्लाह आपका दिन खैर और बरकत से भर दे, गमों को खुशी में बदल दे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान।

0: जी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और समर मॉर्निंग. समर मॉर्निंग में मैं आपके साथ आपकी आरजे महावेश खान, और मेरे पास मौजूद है आपसे शेयर करने के लिए इस वक्त क्या है. इस वक्त मैं आपको बताऊंगी वेदर अपडेट कि क्या हाल चाल है मौसम के. तो भाई इस वक्त कुछ ऐसा है हाल और चाल के मौसम के कि आज कम से कम जो दर्जे हरारत रहेगा वो होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इस वक्त में भी है. मतलब इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये है, और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे आपको पता है 10 बजे के बाद से. तो फिर बस थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है हमेशा की तरह. 44 है और मुझे नस्बता, मतलब मैं आ रही होती हूँ ना, तो एक मैं ये नोट कर रही होती हूँ कि सूरज की ना डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, पोजीशन चेंज हो रही होती है. तो पहले जब अभी मैं कुछ दिन पहले आ रही होती थी तो गाड़ी के एकदम से बिल्कुल नीचे की तरफ सूरज होता था, बिल्कुल आपकी आंखों में ना आंखें डाल के लगा होता था कि निकला हुआ है. लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज होता चला जा रहा है. तो ये भी थोड़ी सी निशानियाँ होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वेदर चेंज होने की. मतलब हाँ गर्मी होगी अभी, लेकिन ये कि फिर भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता हम सितंबर तक जाएंगे तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा और सूरज भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है दूर जाना शुरू हो गया है. मतलब ये मेरी अपनी वो वाली ना, मतलब जो अंदर का एक नासा में जाने का ख्वाब होता है ना, वो वाली उस तरह ही कुछ कैफियत है. मैं उसमें अंदाजे लगा रही होती हूँ. खैर जी, आपको ये भी बताते चलें कि एयर क्वालिटी इस वक्त मॉडरेट है और ह्यूमिडिटी 29%, यानी कि काफ़ी हद तक ड्राई इन्वायरमेंट. तो आपको अपना ख्याल रखना है, पानी वानी पीते रहना है, उसके अलावा मॉइस्चराइजर वगैरह का भी आपने ख्याल रखना है. सनस्क्रीन लगा लें तो बहुत ही अच्छी बात है. और वैसे मैंने एक दिन सवाल ये भी किया था कि कितने लोग हैं जो कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आगे से सुनने को मिला था कि ज़्यादातर जो हमारे भाई वगैरह हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, उन चीज़ों को वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करें. क्योंकि वही है, ये कॉन्सेप्ट एक हम लोगों में बना हुई है ना कि ख़वातीन के काम की क्रीमें श्रीमें जो है ना ख़वातीन लगाती हैं, हमें क्या लेना देना. खैर जी, फिर भी थोड़ा सा लगा लिया करें, क्योंकि अगर आप बाहर काम करते हैं, आउटडोर आपका ज़रा ज़्यादा काम रहता है, तो यूवी इंडेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब स्किन के हवाले से ना मुख्तलिफ मसाइल का इंसान शिकार हो सकता है. सिर्फ रंग काला नहीं होता, रंग तो चलो चलता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे हटकर भी और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, हैट वगैरह का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और साथ में ये कि पानी पीते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपने पानी का इस्तेमाल रखना है. और वही कि आपने याद आने पे, मतलब ये नहीं कि याद आने पे क्या करें, प्यास लगने पर नहीं, बल्कि आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, लेकिन पानी पीना है. ठीक है, आज तारीख क्या है? आज है 12 जुलाई, और 12 जुलाई को दुनिया भर में क्या कुछ होता है मैं आपको बताती चलूं. तो हर साल 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सेंट एंड डस्ट स्टॉर्म्स मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद होता है सेंट और डस्ट स्टॉर्म्स के इन्वायरमेंट, सेहत और मईशत पर पड़ने वाले असरात के बारे में, और दुनिया भर में अवेयरनेस पैदा करना है कि ये आंधियाँ सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हवा के ज़रिए हज़ारों किलोमीटर दूर तक सफ़र कर सकती हैं और कई मुल्कों को मुतासर करती हैं. तो डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से हवा का मयार ख़राब होता है, सांस की बीमारियाँ बढ़ती हैं, ज़रात को नुकसान पहुँचता है, और साथ ही ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासर होता है. तो यूनाइटेड नेशंस तमाम ममालिक को इस बात की तरगीब देता है कि वो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, दरख्त लगाने, पानी के बेहतर इस्तेमाल और क्लाइमेट एक्शन के जो ज़रिए हैं वो मिलकर इन आंधियों के नुकसानात को कम करें. और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कुदरती माहौल की हिफाजत सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है. तो ये दिन मनाया जाता है पहला जो है. फिर 12 जुलाई को नेशनल फ्रेंच फ्राइडे फिर भी मनाया जाता है, तो मेरा ख्याल है दूसरी दफ़ा मनाया जा रहा है, ये इससे पहले कुछ इसी तरह का कुछ मिलता जुलता दिन था. खैर, फ्रेंच फ्राइज दुनिया के मकबूल तरीन स्नैक्स में से, आपको पता है मतलब हर बंदा कुछ खाता हो ना खाता हो लेकिन फ्रेंच फ्राइज तो सभी को पसंद होते हैं. और ये दिन सेलिब्रेट बेसिकली इसलिए किया जाता है कि कहीं पर क्रिस्पी पतले जो फ्राइज़ हैं वो मशहूर होते हैं, कहीं पर कर्ली फ्राइज़, कहीं पर वेफल्स, कहीं पर स्पाइसी सीजनड और मुख्तलिफ तरह के. तो इस तरह के मुख्तलिफ फ्लेवर्स को लोग इन्जॉय करते हैं, और जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो इस दिन ख़ास ऑफर्स और डिस्काउंट्स देती हैं, और आप के लिए इस तरह के ये सिलसिले होते हैं. और उसके अलावा लोग घरों में भी अपने ना फ्रेंच फ्राइज इस दिन बना के खाते हैं, फैमिली वगैरह के साथ इंजॉय करते हैं. तो ये है, आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है आज यहाँ पे भी कुछ ऑफर शॉफर मिल जाए आपको इस हवाले से. जी एक और जो दिन होता है वो होता है एच आई स्केच डे. और ये दिन मनाया जाता है, एच आई स्केच एक मशहूर ड्राॅइंग टॉय है जिसने कई नस्लों के बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को परवान चढ़ाया. तो इस टॉय की मदद से बच्चे और बड़े दोनों नॉब्स घुमाकर ना तस्वीरें और डिज़ाइंस बनाते हैं. आपको याद होगा स्टेंसिल्स भी जिसको हम कहते हैं. तो अगर ड्राइंग मिटानी हो, टॉय को हिला दिया जाता है और स्क्रीन दोबारा साफ़ हो जाती है. अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये वो जो स्क्रीन मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड टाइप जो होता है ना, वो उसकी बात हो रही है ये. तो ये दिन क्रिएटिव सोच, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इमेजिनेटिव प्ले की अहमियत को उजागर करता है. और आज के डिजिटल दौर में भी एच एस स्केच बचपन की खूबसूरत यादों और सिंपल क्रिएटिव इंटरटेनमेंट की निशानी समझा जाता है. अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा है क्या चीज़, सही तरह से देखेंगे, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि घुमा कर फिर किस तरह से तस्वीरें मिटा दी जाती हैं. वो देखना पड़ेगा, मुझे वही लग रहा है वाली जो स्लाइड टाइप होती है ना जो हम लोगों के पास होती थी उसको कहते हैं. खैर ये चलिए जी, इसके साथ ही एक और जो दिन है वो है 12 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल रॉक डे. और इस दिन का मकसद रॉक्स, मिनरल्स और जियोलॉजी की अहमियत को समझाना है लोगों को, और लोगों में साइंस के दिलचस्प शोबे के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है. और ये बताना है कि पत्थर सिर्फ आम चट्टाने नहीं होती बल्कि ये ज़मीन की लाखों करोड़ों साल पुरानी तारीख अपने अंदर समेटे हुए होती हैं. और साइंटिस्ट इन्हीं रॉक्स की मदद से वेलकनोज और माउंटेंस, फॉसिल्स, कुदरती तब्दीलियों का मुताला करते हैं. और स्कूल्स और म्यूजियम्स में इस दिन जियोलॉजी से मुतालिक एग्जीबिशंस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह का अहतमाम करवाया जाता है. ये है सिलसिला. और सिंपल सा अच्छा सा दिन हो ये है कि नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है. और ये अमेरिका में मनाया जाता है 12 जुलाई को. और ये दिन जो है मशहूर फिलोसोफर और राइटर हेनरी डेविड की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सादा और कुदरत के करीब ज़िंदगी गुजारने की अहमियत का पैगाम दिया. और इस दिन लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बेजा मसरूफियात को कम करने, सोशल मीडिया से कुछ देर दूर रहने, कुदरत के करीब वक्त गुजारने और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून बनाने की कोशिश करते हैं. इस दिन का पैगाम ये होता है बेसिकली कि असल खुशी सिर्फ ज़्यादा चीज़ों में नहीं है बल्कि सादगी, सुकून और मुतवाजन ज़िंदगी में है. दिन अभी बाकी हैं भाई, काफ़ी बाकी हैं. 12 जुलाई को अमेरिका में नेशनल पीकन पाई डे भी मनाया जाता है. और पीकन पाई अमेरिका का एक मशहूर ट्रेडिशनल डेजर्ट है जो कि पीकन नट्स, बटर, शुगर और स्वीट सीरप से तैयार किया जाता है. और इस दिन बेकरीज और रेस्टोरेंट्स इस डिजर्ट को ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कई फैमिलीज घर में भी इसको मनाती हैं और इस पाई को बनाकर अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय करती हैं. और मज़े का दिन और वो ये है डिफरेंट कलर्ड आई डे. ये जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है, अवेयरनेस पैदा करता है जिनकी दोनों आँखों के रंग मुख्तलिफ होते हैं. यानी कि आपकी आँखें भूरी हैं, नीली हैं तो आपके लिए नहीं, जिनकी दोनों आँखें जो है ना बिल्कुल वो होता है, एक ब्राउन है और एक ग्रीन है, इस तरह का. मतलब ये बड़ा रेयर होता है लेकिन होता है, कभी कभी नज़र आता है. तो इस दिन को बेसिकली इस कंडीशन को हिटेरोक्रोमिया कहा जाता है और अक्सर ये कुदरती होती है. और इस दिन का मकसद जो है लोगों को ये पैगाम देना होता है कि हर इंसान अपनी अनोखी पहचान के साथ खूबसूरत है और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए. ओए ज़बरदस्त, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अक्सर ये कुदरती होती हैं, तो कुदरती ही होती होंगी, लोग अननेचुरली किस तरह से करवा लेते होंगे, खैर कुछ होता होगा सीन. तो ये थे भाई आज के वो तमाम दिन जो कि 12 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं. फन डेज भी हैं इसमें कुछ मज़े के, फ्रेंच फ्राइज डे, पाई डे, फिर ये डिफरेंट आई कलर्ड वाला जो है ये भी, तो मज़े मज़े के दिन है. खैर आज चलिए जी, तो फिर ये था हमारा आज का जो मैं आपको बताती हूँ रोज़ाना तारीख के हवाले से. और साथ ही साथ अब आपको ये बताते चलें कि आज का सवाल क्या है. जी आज का सवाल ये है कि आप आज ऐसी कोई बात बताएं जो कि बचपन में आप बिलीव किया करते थे एज बच्चा, मतलब बच्चे के तौर पे आपका बिलीव था कि वो बात सही है, लेकिन आपको बड़ा होने के बाद डिस्कवर हुआ कि नहीं वो तो कम्प्लीटली रॉन्ग थी. ठीक है, ये बात आपने बतानी है. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. या आप बच्चे जब होते थे तो उस वक्त आपको लगता था कि ये वाली बात ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हुए तो आपको पता चला कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है. सही है, तो इस कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं बताती हूँ, मैं जब बच्ची हुआ करती थी तो उस वक्त मेरे जहन में जब मैं दुनिया के बारे में सोचा करती थी तो मुझे लगता था कि दुनिया फ्लैट होती है, ठीक है, अपने तौर पे मैं सोचती थी अपने तौर पे। मुझे जब ये जो होती है ना आबशारें, वो मुझे बड़े फैसिनेट करती हैं, अभी तक करती हैं। तो वो आबशार कहीं पर अगर मैं किसी जगह पर बहती हुई देखती थी तो मुझे लगता था कि ये आबशार के साथ जो भी बहता हुआ जा रहा है ये दुनिया से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आबशारें जो हैं वो दुनिया के बिल्कुल कॉर्नर्स पर बनी हुई होती हैं। मतलब इस तरह से जो पानी गिर के नीचे जाता है ना, तो ये कहीं बस अब कहीं और चला जाएगा ये बंदा। तो इस तरह का मेरे जहन में कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटी थी मैं उस वक्त। तो मैं अपने तौर पे ये सोचा करती थी कि ज़मीन फ्लैट है और इर्द गिर्द पूरा समंदर है, और समंदर के बाद कहीं पे इस तरह से आबशार गिरती है और वो फिर मतलब कहीं और ले जाती है आपको। तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो पता चला कि नहीं नहीं भाई ये तो ऐसे ही था, मतलब ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, आबशारों का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप दुनिया से निकल जाएंगे। तो आपके जहन में ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसा कौन सा बिलीफ था जो आपको लगता था बच्चे के तौर पर कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आपको पक्का यकीन था उस बात के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे गुत्थियाँ सुलझती चली गई और आपको पता चला कि जो आप सोच रहे थे वो तो गलत था बल्कि हकीकत तो ये है। तो ये चीज़ बतानी है आपने, समझ गए? मतलब ये मैंने ऐसी एक मिसाल दी, बच्चों वाली मिसाल दी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों वाले बिलीव्स होते हैं हमारे। खैर कुछ लोगों के बड़े बिलीव्स भी हो सकते हैं, तो आप जब मुझे बताना है। अच्छा ये मैं बात कर रही हूँ, बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, मतलब कोई 4-5 साल की थी। तो जब मैं कभी टीवी पे देखती थी आबशार तो मुझे ऐसा लग रहा होता था, लेकिन फिर हम बच्चे तो तकरीबन 14-15 साल तक भी होते ही हैं, बच्चे ही होते हैं। तो आप उस वक्त का भी कुछ बता सकते हैं कि उस ज़माने के हिसाब से आप क्या सोचा करते थे, क्या आपकी थिंकिंग थी, क्या बिलीफ था, और फिर वो बाद में चेंज हो गया, ठीक है? अच्छा जी, इसके साथ ही आ जाते हैं मैसेज के जाने, और आज तो आ गए हैं पराठे। तौफीक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अलवखरा से। वालेकुम सलाम, पराठे चाय मौजूद हैं इनकी मैसेज में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक भाई क्या हाल चाल है, कैसी सुबह हो गई आपकी? और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम जी, आज सूरह कौसर का मतलब मालूम हुआ, बहुत शुक्रिया भाई। और डेफिनेटली हमें इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो और इसके बाद है मेरे पास एक और मैसेज, लेट्स डिस्कस फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जज़ाकअल्लाह, क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है, और ये नाम क्या है इनका? IH लिखा हुआ है। अच्छा थैंक यू, आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए, थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके साथ ही जी, गुड मॉर्निंग मावरश, वो चांद वाली आंटी जो वॉज प्रूविन रॉन्ग। अच्छा वो जो दादी अम्मा चांद पे चरखा काटा करती थी, हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट था, ये सही कह रहे हैं, ये भी होता था, मतलब हमें सुनने को भी मिलती थी बात, और हम बाकायदा मतलब छोटे होते थे तो हम देख भी रहे होते थे चांद के ऊपर। और कुछ लोग बेवकूफ़ इस तरह से बनाते हैं आपको मुझे याद है कि हमारे मतलब एक अंकल हुआ करते थे, नुसरत अंकल नाम था उनका, और पापा के दोस्त थे, कोई की बात कर रही हूँ मैं, तो बाकायदा बोलते थे कि वो चांद पे चरखा काटती है, जो दादी अम्मा होती हैं एक बूढ़ी औरत वो बैठी हुई होती है और चांद पे चरखा काटती है। अब मेरी नज़र ना शुरू से ही कमज़ोर है, तो कभी चश्मा लगा होता था कभी नहीं लगा होता था, और अमूमन ये इस तरह की जो बात हुई है मुझे लगता है मैं चश्मा नहीं लगा होता, तो मैं अपने तौर पर देख रही हूँ, मुझे बाकायदा एक ना इमेजिन करते हुए नज़र भी आ रही है चांद के ऊपर एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है। अच्छा चरखा क्या होता है मुझे आज तक सही तरह से नहीं पता, लेकिन मेरे जहन में ना कुछ ऐसी सिलाई मशीन टाइप चीज़ आती थी, मुझे लगता था कोई पता नहीं सिलाई मशीन जो स्विंग मशीन होती है ना उसको लेके कोई बैठा हुआ है और उससे कुछ कर रहा है, तो इस तरह की कुछ आती थी, बाकायदा लग रहा होता था कि हाँ भाई चल रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है तो ये भी हम सब लोगों के बचपन का बिलीफ था बाकी, तो ये सिलसिला है भाई, मतलब वो पता चला बड़े होने के बाद कि चांद पे कोई चरखा वरखा नहीं काट रही औरत कर। अच्छा ये हसन का मैसेज था बेसिकली, थैंक यू हसन आपके मैसेज के लिए। और साथ ही मेरे पास है शहजादा सलीम का मैसेज, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, कॉल मी। अच्छा चले मैं आपको कॉल करती हूँ, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ मैसेजेस कर सकते हैं 6622107। आपने आज मुझे बताना है कि वो कौन सा ऐसा बिलीव है जो बचपन में हुआ करता था, लेकिन बड़े होने के बाद फिर आपने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई मतलब ये तो नहीं होता, ये तो मैं कुछ गलत सोच रहा था। आप सोचिए मुझे बताइएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ मज़े का मतलब इंजॉयबल भी हो सकता है जैसे भी हसन ने कहा, कुछ वाकई मतलब कुछ सीरियस नोयत का भी हो सकता है, ठीक है? तो जिस तरह का आपके दिमाग में है, जो बात आपको याद आ रही है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, बचपन की यादों को खंगालिए, और हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
3: दोस्तों लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है दरवाजों को फोर्स ना करें ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान

0: राइट, वेलकम बैक. मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ. मैंने सवाल आपसे ये किया है कि बचपन का वो कौन सा बिलीव था जो कि बड़ा होने के बाद पता चला कि भाई ऐसा तो नहीं होता. तो हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: वालेकुम सलाम. क्या हाल है शहजादा सलीम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: सब सेट है? सब सेट है. अच्छा है, अच्छा है.
1: सब सेट है. जस्ट अभी मतलब खाना बोल रहा. मैं
0: नाश्ता किया.
1: मैं नाश्ता करके अभी आके गाड़ी में बैठा. एफएम चालू कर दिया.
0: जबरदस्त.
1: तो ये जरा एक बार रिमाइंडिंग कर देंगे.
0: हाँ हाँ, टॉपिक बताओ. अच्छा, टॉपिक हमारा बेसिकली ये है आज का कि बचपन, हम छोटे हुआ होते हैं ना, तो हमारे जहन में बहुत सारे, एक तो अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें बन जाती हैं. ठीक है, हम सोचते हैं कैसा होता होगा, लेकिन बड़े होने के बाद पता चलता है वैसा नहीं होता. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे घर वालों की तरफ से भी हमसे कही जा रही होती हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर बड़े होने के बाद पता चलता है वैसा नहीं. तो कोई बचपन का ऐसा कोई ऐसा बिलीव वगैरह था आपका, कोई इस किसी ऐसी बात के ऊपर आप यकीन करते थे जो बड़े होने के बाद पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता?
1: जैसे
0: सोचने वाला है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं जब छोटी होती थी ना, तो ये जो आबशार नहीं होती, आप लोग क्या कहते हैं आबशार को, आबशार जो गिरती है यूं करके ऊपर से, पानी पानी जो बहता है, झरना होता है, क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं उसको,
1: वाटरफॉल
0: जो, हाँ हाँ. तो वाटरफॉल जो है ना, वो मैं देखती थी मूवीज वगैरह में कुछ इस तरह से, तो मुझे ऐसा लगा करता था कि ये ना कहीं और चले जाते होंगे. जैसे हाँ, वो मैंने प्यार किया मैं है ना, वो सलमान खान का वो जो फाइटिंग सीन आता है आखिर में, तो वो फिर उसके बाद वो आबशार में गिर रहा होता है, फिर वो मतलब ऐसा वो फिर पकड़ कर आ जाता है वापस. तो जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मैं छोटी थी काफ़ी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा था अपने तौर पे, मतलब एक दिमाग में बनाई थी कि ये वाले अंकल जो है ना, ये गिर जाते हैं यहाँ से, और वो गिरते तो दुनिया से बाहर निकल जाते हैं. मुझे ऐसा लगता था आबशारें ना दुनिया के कोनों पर बनी हुई होती हैं, बिल्कुल किनारों पर बनी हुई होती हैं. फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला नहीं भाई, मतलब ये ऐसा कोई सीन नहीं है. तो ऐसा कुछ था बचपन में सोचा करते थे, कोई ऐसी बेवकूफाना सी बात, फिर बड़ों के पता चला भाई नहीं नहीं ये तो मैं क्या गलत सोच रहा था.
1: ये अपना जो हम लोग हमारे यहाँ पे ना बीच है ना, समंदर है ना.
0: हाँ हाँ.
1: बीच समंदर है ना.
0: हाँ हाँ.
1: तो मतलब अक्सर मतलब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरा ख्याल है 5 किलोमीटर डिस्टेंट होगा.
0: अच्छा,
1: एक तरफ 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंट होगा. और वहाँ पे मतलब ऐसा मतलब है ना, बचपन से ही मतलब है ना, मामले में इधर उधर है ना, बोले हम लोग जैसे मतलब बसे हुए है ना यहाँ पर, इतना करीब बसे हुए ना, और तारीखों में रेड अलर्ट होता था, इस तरह होता था, इस तरह होता था, तो बोले हम लोग है ना सब बह जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला इधर, एकदम करीब में यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए. अच्छा, जो दूसरे दोस्त रहते थे ना छोटे छोटे, कोई दूसरे दूर मतलब किसका, किनका यूपी का था, किनका कौन था, हम तो बॉम्बे में पैदा, हम तो वहीं के थे, तो वो है ना हमको ना ताने मारते थे, हमने तो वो यूपी चले जाएंगे ना, वहाँ तो है ना गाँव है ना, मेरे नाना का है, मेरे दादा का है, सब है ना, अब हम लोग को कुछ होगा तो ये इधर जो लोग है ना, हाँ ये ना ये सब, हाँ ये सब है ना खत्म हो जाएंगे, ये सब बह जाएंगे, इतना मतलब
0: अच्छा ये इस किस्म की बातें हमने भी सुनी है, जैसे मुंबई और कराची काफी हद तक कहते हैं ना एक जैसा है, तो हम भी अपने बचपन में सुनते थे कि कराची तो किसी वक्त भी तूफान में ना नीचे चला जाएगा, अंडर वाटर हो जाएगा, इस तरह की बातें सुनी है हमने भी.
1: अब तक इतने टाइम हो गया वहाँ पे, हमने फिर जैसे जैसे बड़े हुए वहाँ मैचेस खेली, वहाँ तो मतलब जितने बड़े जितने लीजेंड और बड़े अच्छे मतलब स्टार है, बॉलीवुड के भी कई स्टार है, तो उनके जो बंगलोज है ना बंगलोज, उनको जो लहरें टकरा के वापस जाती है. उनका बॉर्डर देखो. फिर मैं बोला हम लोग तो फिर भी थोड़ा डिस्टेंट है, इनका क्या हाल होगा, लेकिन ना अभी तक उनको कुछ हुआ ना हमको कुछ हुआ, और सब और सलामती है. तो इस तरह के ना मतलब अपना चीजें ना मतलब इस तरह से ना ये मुझे आती थी. और एक बार एक हुआ था, एक रियल एक्सीडेंट था बहुत पहले बचपन का, कि यूएस या कौन सी कंट्री ने एक है ना वो कुछ उसको क्या बोलते हैं सैटेलाइट क्या पता नहीं क्या छोड़ा था उसने एक को आसमान में, तो उसका रुख इधर हिंद एशिया की तरफ था उसका.
0: अच्छा.
1: तो वो बोले कहीं भी वो गिर सकता है. हाँ वो ना कहीं भी गिर सकता है, तो कई महीनों तक यही बातें चल रही थी,
0: परेशान
1: रहे या पाकिस्तान में गिरने वाला है या यहाँ गिरने वाला है। तो बहरहाल जो है ना वो बहरे हिंद में गिरा था वो, तो उसकी फिर न्यूज मिली थी कि वो बहरे हिंद में गिरा था। और बहरे हिंद में गिराया था कैसे बोलते, जो फाइटर्स वगैरह जो रहते ना वो बताते क्या उसको उस तरफ उसको है ना रुख किया था। अब मैं उस बाद में जैसे जैसे जब समझ आए तो यार वो उसको लोग किस तरह उस तरफ उसका रुख कर सकते, वो तो मतलब कैसा मतलब क्या होगा यानी उसको यानी डैमेज किया होगा या क्या किया होगा, तो अब अल्लाह बेहतर जाने। बस सुने थे बस इस तरह से ना,
0: तो
1: पता है कभी आपसे हिस्ट्री में कभी सुना होगा इस तरह से?
0: नहीं मुझे याद, मुझे समझ में नहीं आई क्या किस चीज की बात कर रहे हैं आप।
1: हाँ कुछ, हाँ कुछ ऐसा मतलब है ना जैसा जैसा
0: आसमान पे कुछ आया था क्या?
1: हाँ हाँ वो बोले नहीं नहीं वो भी बोलते ना यूएस ने छोड़ा था।
0: अच्छा,
1: ये भी सुनने में आता है ना, जैसा हिरोशिमा में आया था कि एटम बम मार दिया था ना जापान में,
0: तो इस तरह की कोई चीज थी। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: वो बोले यहाँ गिर सकता है यहाँ गिर सकता है, और सब एकदम टेंशन में ना। मैं छोटा था मेरे को लेकिन बातें अच्छी तरह याद है, वो पड़ोस की खंभा वगैरह रहते ना सब बाहर आके ना बैठे रहते थे, बोले कहीं अभी यहाँ नहीं गिरता है कहीं वहाँ नहीं गिरा, डिक्लेयर हुआ था वो इस तरह से। हाँ खौफजदा मतलब माहौल रहा था उस टाइम का, लेकिन हुआ नहीं।
0: खौफ बड़े फैलाए जाते हैं भाई, मुझे भी इस पे ना आपकी बातों पे खौफ याद आ रहे हैं जो किस किस तरह से फैलाए जाते थे।
1: इस तरह से ना फैलाए जाते थे, और जैसा कुछ आपने अंदरूनी कुछ मामला थे ना मुल्कों के कुछ फसादात के जैसे ऐसे होते थे ना, तो हम तो छोटे रहते थे तो उनको मना करते थे, फिर कोई आके बोल रहा था फला जगह ना बम रखा है, तो हम एकदम मतलब संजीदगी और एकदम फिर वो हम उसको ना आगे ना फॉरवर्ड करते थे, जो हमारे के 10-12 साल के बच्चे होते थे ना उनके साथ के इस तरह से ना हम उसको है ना ये करते थे,
0: अफवाहें फैला रहे थे आप।
1: अफवाहें का ऐसा माहौल हो जाता था, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं इस तरह से मतलब।
0: सही
1: नहीं, नहीं भाई बढ़िया हो गई क्योंकि तभी मतलब इतना कोई ऐसा मोमेंट वो ही नहीं मतलब उस तरह के काफी मतलब परेशानी का सामना होना पड़े और काफी चीजें मतलब ना इतर बितर हो गई है, कोई बिछड़ गए सारा कुछ नुकसान हो गया। बहरहाल है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं, टाइम हो गया ऐसा कुछ नहीं,
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सब कुछ सही रखे।
1: हाँ माहौल था ऐसा, और अपना फ्राइडे जावेद साहब से मुलाकात हुई।
0: अच्छा अच्छा जबरदस्त, ग्रेट।
1: नहीं फोन पे,
0: फोन पे मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा ओके, अभी फोन पे मुलाकातें चल रही है।
1: मैंने फोन किया था तो फिर मेरा फोन रखा था तो मैं रिसीव नहीं कर पाया, फिर देखा तो है ना मिस कॉल है, तो फिर मैंने ना रिमाइंडिंग किया था। उस दिन मेरा ड्यूटी भी था एक्चुअली, शाम तक ड्यूटी था। हाँ तो बस यही काफी अच्छी बातें हुई, मोहब्बत वाली, उस्मिजाद वाली, सलूक वाली, काफी चीजें हैं।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह जरूर आप लोग मिलिएगा मिलिएगा, और साथ ही आज भी अंताक्षरी का सिलसिला इस वीक भी तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है?
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, ओके अल्लाह
0: ओके जी, शहजाद सलीम थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अच्छा बीच में मुझे थोड़ी सी आवाज़ जो ना पता नहीं एकदम से आना रुक गई थी, और फिर उसके बाद खैर आवाज़ आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जी, गुलजार भट्ट बात
0: कर रहा हूं। जी गुलजार भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके?
2: अल्लाह का करम है। सुना था शहजाद सलीम की बातें?
0: जी जी जी,
2: वो जिस बात की आपको बोल रहे थे ना, वो स्काई लैब थी अमेरिका की, स्काई लैब जब एक दिन
0: जी
2: जब स्काई लैब एकदम फ्री हुई थी ना, तो वो हर आदमी डरता था कि मेरे ऊपर गिरेगी आगे।
0: सही सही सही, अच्छा अच्छा सही, ये था तो। अच्छा और आप बताएं, बचपन में कोई ऐसा बिलीव था जो कि आपको ऐसा लगता था कि होगा कुछ ऐसा, लेकिन फिर बड़े होने के बाद पता चला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता?
2: नहीं वो हमारे जो मेरा गांव है ना उसके तकरीबन 11 किलोमीटर शमाल की तरफ मंगला डैम है, ठीक है, वो बिल्कुल ऊपर है ना, काफी ऊंचाई में है ना, हमारा गांव बिल्कुल नीचे। बोलते हैं वो बच्चों ने बोलते थे कि मंगला डैम टूटेगा हमारा गांव बह जाएगा इसमें, तो वो थोड़ा डर लगता था। बाकी और पानी में से तो हम वैसे नहीं डरता, वो बहुत पानी था ना, वैसे नदी में हम हमेशा नहाते रहते थे, काफी तेज पानी होता था, होता था। तो और तो ऐसा कोई नहीं है, डरने की क्या बात है, मोहतरमा एक दिन आएगी जब आएगी।
0: सही सही। अच्छा सवाल मेरा ये था कि कोई ऐसा बिलीव, जैसे बचपन में हमें एक आ जाता था ना कि सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, तो वो हमें बड़ा होकर पता चला होते हैं, जिन होते हैं लेकिन ऐसे नहीं हमारे सामने वामने आते, तो इस तरह की कोई चीज थी जो बड़े होकर रियलाइज हुई कि नहीं भाई बड़े तो डरा ही रहते, ऐसा कुछ है नहीं?
2: नहीं, बोलते थे हमारे साथ नदियां ऊंची नीची जगह है ना, पहाड़ी इलाका है ना, तो बोलते हैं इस इलाके में जाओ तो वो चुड़ैल होती है भाई इस इलाके में,

0: हम गया भी उधर एक दफा दो कोई ऐसे जैसे इंसान देखा भी, लेकिन जब बड़ा हो गया ना इधर आया तो हमको यानी मैं 94 से 92 तक मैं आज शिप कीपर इसमें कोई ऐप नहीं है, मैं करना पड़ता काम ठीक है बिल्कुल। मौसम बड़े बड़े झाड़ थे इधर जमीलिया से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता पैदल शमाल की तरफ, उधर दरख्त है झाड़ी के, छोटे झाड़ी के बेशुमार दरख्त है। अच्छा एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर के एरिया में तो अंदर थोड़ी कपड़े में थी, मैं उधर अकेला भी रहा मोहतरमा रात को
1: ठीक है।
0: तो इधर रहता है ना कि मेरे को लाइट भी नहीं दिखती थी जमीलिया की या इस झाड़ी की सी भी,
1: सही
0: बिल्कुल जंगल साए करता, डर तो होता था लेकिन नमाज पढ़ के सो गया बस अल्लाह मालिक कोई बात नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं डरा, मैं बिल्कुल ये नहीं है, मैं बोला अभी डरेगा नहीं इधर, तभी तो मेरे को कोई बचाने वाला है नहीं है अल्लाह के सिवा।
1: बिल्कुल
0: नहीं, मेरे को डर मेरा हकीकत है मेरे दिल में नहीं होता है बिल्कुल।
1: वैसे मेरा भी कुछ ऐसे ही मेरा भी मामला है।
0: ये सांप नहीं है, ये सांप होता है वो छोटे से यानी तकरीबन एक गज से ऊपर नहीं होगा वो। अच्छा। वो होता अच्छा मोटा, तो सर बहुत मोटा होता है ऊपर जैसे प्लास्टिक के सींग होते हैं, तो वो बहुत डेंजर सांप होता है, अच्छे लंबे दांत होते हैं, मुंह अच्छा मोटा होता है, बाकी गर्दन पतली फिर पीछे से मोटा।
1: अच्छा सही सही सही।
0: ये इधर सांप है वो चलता भी, उसका निशान भी दूसरी तरह सीधा नहीं है।
1: अच्छा तो उससे भी डर नहीं लगता आपको?
0: नहीं मैं पकड़ के कितने डब्बे में डाले ना, डंडे से पकड़ के डब्बे में डाले।
1: क्या बात है भाई। अच्छा नहीं भाई मैं तो मुझे भूतों से डर नहीं लगता है, जानवरों से तो बहुत डर लगता है।
0: मैं मोहतरमा बहुत यानी शिकार का मेरे को शौक है, बटेर तीतर बटेर ये पाकिस्तान में जंगल में हम यही काम करते हैं, बस पढ़ते स्कूल में आते हैं बस बाद में यही काम। मेरे को डर उतर गया मेरा, सांप देखा ना कई मेरे पांव के नीचे, मैं बूट पहन था लाजमी पड़ा, चप्पल में कभी नहीं गया।
1: सही एहतियात की जरूरत है, लेकिन वाह भाई मतलब काफी माशाल्लाह से बहादुरी है ये तो।
0: नहीं, वो खून में आता है ना, मेरी वालदा से अल्लाह जन्नत करे वो नहीं डरते थे सांप, हमारा थोड़ा बाहर घर है ऐसे कितने सांप, उन्होंने बड़े बड़े सांप मारे, नाग नहीं होते वो।
1: सही सही चले गुड जबरदस्त,
0: मुतमन लगा रहता है कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंसान को वैसे एहतियात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से।
1: हाँ ये तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बात आपकी ठीक है,
0: एहतियात तो लाजमी है, ये नहीं कि मैं अभी बोलूं मैं सांप को जब पकड़ लूंगा ये बात नहीं है। तो शहजादा सलीम वाली है ना, वो वैसे हमारा पूरा गांव उस दिन डर रहा था कि हम पर गिर जाएगा, एक बोलता था हम पर।
1: अच्छा सही सही सही
0: सही। स्काई लैब अमरीका का वो खराब हो गया था ना, तो फिर उन्होंने कोई नीचे से किया और समुद्र में गिर गया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा सही सही।
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह
1: खैर करे जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुजार भट साहब, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, लाफिज। रही जी तो गुलजार भट साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफी कम आते हैं लेकिन अच्छी बात करते हैं जब भी आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: आरिफ बात कर रही
1: हूं जी। आरिफ कैसे हैं भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: आज अल्लाह खैर करे। कैसे बता दिया
2: अब तो मैंने सोचा कि अभी डेली क्या है, पता नहीं पा रही है
1: अरे नहीं ऐसा तो आपकी आवाज़ में बताऊँ एक बात क्या है, एक तो अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, फ़ोन पे मैसेजेस ज़्यादा आते हैं आपके, ठीक है। दूसरी ये कि आपकी आवाज़ जो है ना वो है जैसे एक बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, सना से कहना चाहिए
2: जो अवेलेबल है
1: तो वो वाली चीज़ है, कुछ आवाज़ें होती हैं ना बिल्कुल चेंज होती हैं, वो मैं फ़ौरन से समझ जाती हूँ, तो थोड़ा सा वो वाला सीन है अभी, थोड़ी थोड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? सब सही है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आप बताएं आरिफ अंसारी, ये कोई ऐसी बात थी बचपन में कोई गलत बिलीफ था, बड़े होके पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता?
2: बहुत ही गलत बिलीफ था कि बड़े होके बहुत मजे होंगे।
1: वेरी नाइस, मुझे भी ऐसे लगता था।
2: बड़े होंगे बहुत ही मजे होंगे, बस खाओ घूमो बाइक पे ये वो।
1: हम लोगों को कितनी जल्दी थी ना बड़े होने की। वैसे अच्छा ये वाली जो जनरेशन है जैसे मेरे बच्चे हैं ये बड़े तेज हैं भाई, अभी से ये बड़ा होना ही नहीं चाहते, ये बोल रहे होते नहीं हमें नहीं बड़ा होना, हम भी तो शौक ये था कि हमें बड़ा होना है।
2: बोल तो रहे हैं बड़े नहीं होने पर इतने जल्दी बड़े हो रहे हैं कि क्या ही बताएं।
1: ये तो है। सही बात।
2: मेरे दो बेटे मतलब एक 22 अभी 23 महीने का है और एक 4 महीने का, इतना जल्दी जल्दी वो लोग मतलब माशाल्लाह की उनका जो हाइट और बॉडी हो रहा है।
1: बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मतलब आप सोचने बैठो ना तो आपको लगता है कि कैसे गुजर गए इतने सारे साल, आपको अंदाजा ही नहीं होता।
2: मैं यही सोच रहा हूँ कि ये लोग इतना जल्दी जल्दी बड़े, फिर बड़े होंगे बोलेंगे बचपन ही नहीं वो हुआ, मैं भी टाइम नहीं गुजार पा रहा हूँ लोगों के साथ।
1: हाँ, ये भी है ना, सही बात है।
2: था कि हाँ बड़े होंगे बहुत ही मजे होंगे पर है नहीं।
1: हाँ ये तो है, ये तो है, बिल्कुल है, ऐसा लग रहा होता है हमें। सही बात है, अब बचपन याद आ रहा होता होगा ना।
2: हाँ अभी बहुत याद आता है, खास वो बड़े होने की चुलना मची होती।
1: ना भी होती फिर भी बड़े हो जाना था।
2: पर एक, एक तो वो तो ना होता है कि हाँ उससे बड़े होने की इतनी चुल थी।
1: सही है, सही है, ये मजे का था भाई, ये मजे का था। ये सबसे बेस्ट आंसर है मेरा ख्याल है आज का। जबरदस्त सारी पंसारी। और बताएं भाई, और वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड था नहीं था, छुट्टी मिली या नहीं मिली?
2: नहीं वीकेंड तो हम लोग का नहीं होता है।
1: अच्छा अच्छा, नहीं था, लेकिन दिन अच्छे गुजरे?
2: शाम को गए थे घूमने,
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: गाँव के बहुत सारे मिले।
1: अच्छा अच्छा, गुड, जबरदस्त,
2: 4-5 घंटे बैठ के टाइम गुजारा फिर आ गए।
1: सही सही, गुड, जबरदस्त, चलें बहुत अच्छी बात है। अच्छा वीकेंड गुजरा आपका।
2: तो दिल कर नहीं रहा था पर अभी कल ड्यूटी है तो आना भी पड़ता।
1: सही है, सही है, बिल्कुल।
2: मैं कतर में 4 साल में पहली बार मतलब हम लोग 10-12 आदमी गाँव के
1: इकट्ठा हुए थे। सही, जबरदस्त, बहुत आला, चले अच्छा रही माशाल्लाह से। चले आरिफ अंसारी, अपना बहुत ख्याल रखिए, कुछ और कहना चाहते हैं? चलें ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। प्रिय जी, अल्लाह हाफिज़। प्रिय जी, तो हमारे साथ एक और कॉलर आ गए हैं, बस इनसे बात करते हैं, उसके बाद ब्रेक की तरफ हमने जाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? नूर मोहम्मद मंसूर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? माशाल्लाह, जबरदस्त। और बताएं भाई, क्या सीन है, सुबह अच्छी हो गई?
3: बस आपके प्रोग्राम में सुबह अच्छी हो गई।
1: सही सही,
3: इस तरह से शुरुआत करते हैं।
1: जी जी, चलें बहुत बहुत
3: शुक्रिया।
1: अब देखिए क्या होता है, हमारे ऊपर तो खैर कुछ है ही नहीं, हमने सोना हो या जागना हो क्या फर्क पड़ता है, जो मिलेगा हम वो करेंगे। देखिए आगे क्या होता है इंशाल्लाह। फिर मुलाकात मेरी होगी 30 अगस्त को इंशाल्लाह होगी, फिर उसके बाद इस हफ्ते के बाद इंशाल्लाह 2 दिन तो हम साथ होंगे इस शो में, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सिलसिला रहता है, फिर कहाँ मिलते हैं आपसे।
3: इंशाल्लाह,
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बताएं नूर मोहम्मद मंसूर साहब, कोई बचपन में ऐसी बात थी जो आपके आपको बताई गई, आपने खुद सोची, फिर बड़े होने पे पता चला कि ये तो होता ही नहीं है?
3: बचपन में ऐसा एक चीज ऐसा है जिस पे तो मैं बहुत बिलीव करता था कि सही में ऐसा होता होगा, पर जब से मैंने होश संभाला मैंने सोचा इतना ईमान हम लोग का कमजोर था जिस पे हम लोग विश्वास करते। जैसे सुना एग्जाम्पल, कोई नॉन मुस्लिम इंतकाल हो जाता था ना हमारे मुल्क में, तो हमारा दोस्त का एक चाची था, वो लोग बोलता था नॉन मुस्लिम वाले, तो जब हम लोग मर जाते हैं ना तो उसके बाद जो लोग कोई मतलब रस्म करता है तो बोलता है उसको इसमें जन्म हुआ, उसको इसमें जन्म होना, तुमको कैसे पता? तो मैं यकीन नहीं करता था। तो फिर नहीं, मैं उस टाइम यकीन करता था यहाँ से मेरे लोग का दोबारा जन्म होता होगा, लेकिन अभी जब जब से वो समाला, जैसे मैंने इस्लाम का कुछ जानकारी किया, मैंने इतना तोबा किया उसके ऊपर, कुछ अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करे, कि उसके ऊपर मैं बिलीव रखता था कि इंसान का मरने के बाद एक हफ्ते बाद भी जन्म होता है, दुनिया में फिर आते
1: हैं। सही सही सही।
3: और दूसरा बात ये था कि मेरा अम्मी बोलता था, मैं पैसा बहुत खर्च करता था, बोलता है मिट्टी का वो पैसा रखने वाला होता है ना, उसमें डालो, उसे पैसा रखेगा तुमको ज्यादा आएगा।
1: अच्छा अच्छा।
3: बिल्कुल जितना कि उतना ही है, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं किया फिर। तो पहले

0: सही सही सही सही है। तो ये बिलीव थे बचपन के।
1: रामी ने बोला पैसा है ना, देखो अगर तुम जिसे खा लिया था तो खर्च हो गया होता, अभी तुम्हारा पैसा बैलेंस है तो पैसा भर गया ना तुम्हारा। चलो मेरी बात सही है।
0: हाँ उस तरह से तो सही है। सही, ये देखिए बचपन की ना बहुत सारी बातें होती है। आपको वो नहीं बताया कभी किसी ने कि अगर दांत टूट जाता है तो वो तकिए के नीचे रख दो, सुबह में पता नहीं वो क्या बन जाता है। मुझे वो बात याद नहीं है, लेकिन मेरी पड़नानी ने ये बात बताई थी। ये नहीं बताया,
1: बच्चे लोगों को खिलाता था मामा कटोरी में दूध ऐसा वैसा, वो हकीकत होता है, वो खाता है, बच्चे को मुंह में डालता था ऐसे करके, हाथ खाली है कैसे जाएगा दूध ऐसा, हम लोग उसे भी एक्टिंग निकालना चाहते।
0: वही ना बचपन जो है ना आपका मासूम ही होता है हमारा। ये सिलसिला है। चले जी नूर मोहम्मद मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते हैं? जी जी बोलिए।
1: इसलिए तो बच्चे को अल्लाह ताला ने 7 साल से पहले पाक फरमाए, कबूल किए,
0: सही बात है,
1: मासूमियत होता है ना उसका।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही
1: है। अगर बच्चे अगर सामने में अगर दुआ कबूल करे उस बच्चे का जगह तो कबूल होता है, या बच्ची करते क्या आप लोग से मालूम करना जरूरी है। मतलब बच्चे पास होता है ना, मतलब उसका मतलब की
0: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी नूर मोहम्मद मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107. Time check. Time check. राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और 7:00 हो गए 2 मिनट. हमारे साथ एक कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह
0: जी. कौन बात? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र.
1: आज आपने ऐसे छेड़े हुए हैं कि बस लोगों को डरा रही है भूत प्रेत से.
0: नहीं, बहुत सारे होते थे. अब देखें, मुझे एक बात और याद आई कि बचपन में जब छोटे हुआ करते थे, बारिश होती थी ना खास तौर पे, तो उस वक्त ना लोग बोलते थे कि अगर आप पानी वो जमीन को खोदते रहो डिग करो, तो वहां पे वो छोटे छोटे से बोने निकल आते हैं. तो वो हम खोदते रहते थे.
1: ऐसे मतलब हम लोग टोटके आपस में ये कर शेयर करके, और उससे मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता था.
0: हाँ.
1: कि अभी वो सोच के इतना हंसी लगता है कि यार हम लोग का भी बचपना इस तरीके का था कि हम लोग इसको अपना बिल्कुल सच्चा समझते थे कि यार ये बिल्कुल वाकई हो के रहेगा.
0: हाँ.
1: ऐसे एक दूसरे पे, और एक दूसरे को बताते थे कि अभी तू ऐसा किया ना, अब तेरे साथ ऐसा हो के रहेगा.
0: हाँ,
1: ये पक्का है.
0: हाँ.
1: तो ये सब बहुत मतलब पहले के टाइम में ये सब चीजें बहुत आम थी.
0: हाँ.
1: और पहले क्या होता था, हम लोग बचपन में ये गांव में किसी को भूत ये शैतान आके उनके ऊपर हावी हो जाते थे, तो जो ये जो छुड़ाने वाले जाते थे, तो ये पुराने जो मरे हुए रहते तो उनका नाम लेके ये कहते थे मैं फला हूँ. अब और डर से लग जाता था कि यार ये किधर से जाग के आ गया, मतलब यार ये वही है.
0: अच्छा?
1: और मैं तुझे नहीं छोड़ू. हाँ, उसका नाम लेते थे.
0: अच्छा?
1: मैं फला हूँ.
0: सही.
1: मर्द हो या औरत हो, उनका मतलब नाम लेके

मतलब मैं फला जगह पे, मतलब ये कि मैं जाग गया हूँ तो उस टाइम इसमें यकीन होता था कि यार वाकई ये मरने के बाद में ये लोग भूत बन जाते हैं और बनने के बाद में दूसरे पे आके और उसको सवार होके और मतलब अपने असल

0: करते हैं जादूगर का मतलब ये काम, ये सब वही गैब की बातें बता के और कहानियां सब सुनाते हैं, उसमें ज्यादातर झूठ, ये सब हदीस भी है उसमें ज्यादातर झूठ मिला के, और वो लोग अपने तरफ से, और उसमें बहुत सी बातें सच भी होती हैं। तो उसके हमजाद जो होते थे तो वो हम लोग ऐसे हिल जाते थे डर जाते, और इतने चीख चिल्ला, इतना कूप फटक, फिर कुछ लोग मतलब जो
1: कहाँ देखा मैं समझ नहीं पा रही
0: भाई, हमारे गाँव में ये सब आम था। वो जो हमारे भाई लोग सुन रहे होंगे यूपी साइड के हैं, उनको ये सब बिल्कुल वो शायद बताए भी अभी आपको।
1: कोई इंसान आता था ये क्या होता था?
0: नहीं, इंसान नहीं आता था, ये जिन जो उनके ऊपर आके मस्त हो जाते थे, जिन।
1: अच्छा, सही सही।
0: तो वो जिन क्या कहते थे, तो पूछते थे बता तू कौन है, बोलते थे कि तुझे मैं दांत को पीसना, और मतलब मतलब अजीब गरीब का अपने जिस्म का मतलब हरकत देना, आंखें निकालना, और मतलब
1: सही।
0: फिर बाद में बोलते थे मैं फला हूँ।
1: तो हो सकता है नाटक कर रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल ही नाटक कर रहा, कोई भी ना हो।
0: जैसे असल में होते थे कुछ जिन उनके ऊपर मतलब मस्त होते थे, थोड़ा परेशान करते थे, लेकिन उनको उनका भी सियासत होता है ना, वो बदमाश मतलब लोगों को उसमें वर्गला के और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, असल में वो लोग बेवकूफ बनाते हैं। मैं फला हूँ तो वो फला के नाम से, तो वो बोलते थे अरे भैया वो वहाँ पे उसको दफन किए, वो जाग गया। तो जाग गया है वो, तो अजीब सी कैफियत हो जाती थी। हम लोग तो एकदम हिल जाते थे कि यार ये कहाँ से मतलब, भाग जाता था वहाँ से, भागो। अच्छा। ये कहीं हम लोगों के ऊपर बिना मतलब के हम लोग, तो ये तो बहुत आम सी बात थी। और वो बड़े जोर मतलब शोर से तो मतलब वाला कुछ दुआ हुआ करके कुछ देर के बाद में छोड़ के जाता भी था, लेकिन वो आम बात था कि उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद में उनके ऊपर फिर वापस आके उनको तंग करता था। फिर वही बोलता था, दूसरे टाइम दूसरा नाम बोलता था, अच्छा तो तू फला को बुलाया था ना मुझे ये करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए बुला, आज मैं नहीं डरने वाला हूँ या डरने वाली हूँ, मतलब करके वो तरह तरह के ड्रामेबाजी वो दिखाते थे।
1: सही,
0: तो ये सब बड़े आम बात थे, मतलब ये भूत प्रेत का तो ये असल में जिन्नों में से ही है। अब उसमें जो शर निकल गए वो शैतान के नाम में उनका, और उनमें जो इबादत गुजार है इंसानों की तरह, वो अच्छे में शुमार होता है, बस वैसे जिन्नों में। अब उस वक्त हम लोग को ये था कि यार वाकई ये जिन प्रेत ये इनकी अलग ही नस्ल है।
1: सही,
0: ऐसा होगा, ये बहुत आम बात थी। हम तो डर जाते थे, और ये अभी भी मतलब कहीं पे होते, मतलब ये दरगाहों और गाहों पे मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन ये सब आम बात है, लोग ये सब दरगाह आपने भी शायद वीडियो में देखा होगा।
1: नहीं, वो तो मैंने भी देखा है कुछ थोड़ा सा इस तरह का। हाँ, बहुत छोटी थी, एक दफा हम लोग गए थे तो वो मैंने देखा था कुछ, मतलब ना इधर से उधर औरतें भाग रही हैं, और मैं पूछ रही थी भाई क्या हो गया इनको, बाल नीचे करके, तो वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है।
0: अजीबो गरीब हरकत होता था उनका, बातें बड़ी मतलब ये थी, और आपस में ये होता था।
1: सही,
0: तो
1: सही,
0: बड़ा अच्छा लगता था वो बचपन का, हालांकि तो उतना ज्यादा नहीं है ये, और जब हम लोग छोटे थे और लोगों का मतलब ये
1: आजकल के बच्चे ना, आजकल के बच्चे हकीकत तक पहुंच जाएंगे।
0: हाँ जी जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा, जिस तरीके से माहौल बदल गया ना, तो वो लोग शैतान भी इतना नहीं तंग करते हैं लोगों को इस तरीके से।
1: ये ना मेरे साथ हुआ था, खैर हम भी मतलब हमारे वक्त में भी बच्चे थोड़े से तेज ही हो चुके थे। मुझे हमारे घर में कुछ हुआ था ना, तो कुछ मतलब कोई चीज गुम गई थी, तो मुझे मेरे एक अंकल, उन्होंने बोला अम्मी को, बेसिकली पापा थे नहीं और हम लोग यहाँ पे थे, तो कुछ कोई चीज पता नहीं, पासपोर्ट गुम हो गया था, कुछ इस तरह का मामला था, हम लोगों को वापस जाना था।
0: हाँ,
1: तो उसने कुछ ना, हाँ, नेल मेरे लगाया नाखून के ऊपर, कुछ ब्लैक कलर लगाया, और वो मुझे बंदा कह रहा है कि मैं छोटी थी मतलब होंगी 4-5 साल की, हाँ, तो कह रही देखो एक औरत ना झाड़ू लगा रही है, और ये झाड़ू लगाते लगाते वो पासपोर्ट भी इसने झाड़ू लगा दी और ये कर दिया, देखो ये इस तरह की औरत। और मैं उसके पीछे पड़ गई, मैं उसके पीछे पड़ गई, मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, झूठ बोल रही है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मुझसे बड़ा चिढ़ गए थे वो।
0: हमारे उधर भी था कि नाकून में लगा के तो फिर उसका बोलते थे उसका चेहरा नजर आ जाएगा।
1: और वो जो अंकल मुझे लेके गए थे ना, मुझसे इतने नाराज हो गए थे, पूरे रस्ते मुझे इतने मतलब गुस्से में वापस लेकर आए वो, बहुत बदतमीज बच्ची है।
0: किसी का कोई सामान नुकसान हो जाता, चोरी हो जाता, तो एक आमिल होते थे उनके पास, बोलते थे चौक जगह पे, वो लोग सफर करके वहाँ पे जाते थे और ये पता लगाओ ये फला नुकसान किसने किया किसी का। मान लो हम लोग के इधर चावल और गंदम का ये सब होता था, तो हम लोग का एक मतलब रखने का एक मखसूस जगह होता था, गांव के बाहर ही रखते थे उसको, फिर बाद में पूरा रेडी हो जाता था फिर वापस। तो कभी कभी क्या होता था, उसमें से चोरी हो जाता था, तो चोरी लोग तो ये भी पता लगाने के लिए आमिल के पास लोग चला जाया करते थे कि यार किसी का जेवर चोरी हो गया घर में, तो बोलते थे फला आमिल के पास, वो बता देगा। तो वो बदमाश

0: क्या करते थे वो बगल के अड़ोस पड़ोस के उसका नाम ऐसे लोगों का नाम लेके और आपस में तफरकाबाजी और दुश्मनी करा देते थे वो बदमाश क्या करते थे वो दुश्मनी करा देते थे। ये सब बहुत आम था लोगों को, मतलब अपने पड़ोस की जो अपने खास में से है, बोलता था अपने आपके खास में से ही है जिसको आप बहुत अच्छा समझती है ना। अब आदमी का जहन तरह तरह का जाता था, यार वो हमारे घर में आई थी या आया था, शायद उसने, मैं उसके ऊपर यकीन करके अपने घर में अपने फला फला जगह पे बिठाया, ये बहुत ज्यादा गलत फहमी का ये सब बहुत, और अभी भी कुछ लोगों के अंदर है जो जहाँ पे कुछ जिस इलाके में जहालत का है, तो ये सब चीजों से मतलब दूर रहना चाहिए हमें। ये बिल्कुल लोगों को धोखा देते हैं शैतान, आपस में दुश्मनी करा के लफड़ा कराते हैं, ये
1: सही बात। सही बिल्कुल ऐसे ही
0: छेड़ा कि बिल्कुल तुझे हंसी लग रहा था थोड़ा सा कि बबला यार चलो। कभी कभी शाम के टाइम पे हम लोग निकलते थे, मतलब अब उस टाइम तो इतने जराए होते नहीं थे, मतलब वॉशरूम और ये सब, तो थोड़ा सा खिर करके आवाज आया, अंधेरा होता था इतना बिजली नहीं होता, तो हिल जाते थे अरे यार कुछ तो लगता शैतानी मेरे जा रहा था, ये सब आम था।
1: सही है बचपन भी ना, तो वाकई मतलब बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं, आपके दिल में बड़े खौफ भी होते हैं, बिठाए भी जा रहे होते हैं, ये भी होता है, ऐसे ही है।
0: मैं पलट के देखता नहीं था, मेरे अंदर ये होता, मैं बोलता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन पलट के देखूंगा, देख लिया पलट के तो हो सकता वो नजर आ जाए, और लोग पलट के मत देखना नहीं तो फिर वो तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा, अगर नहीं पलट के देखोगे तो बचे रहोगे। अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था,
1: सही
0: स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे भी वो एक कब्रिस्तान के पास वो मतलब वो जामिया बना हुआ था।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो रात में हम लोग जब सोते थे तो एक बच्चे को उठा के छत पे फेंक, मतलब वो गिर गया, वल्लाह आलम गिर गया कि क्या हुआ, और उसको कुछ भी नहीं हुआ।
1: हाँ।
0: तो बाद में क्या पता चला कि नहीं, वो जिन्नों ने उससे फेंका था वो उसके हिसाब से, और उन्होंने मतलब ये किया, तो ये सब बहुत आम बात था, बहुत सी कहानियां थी।
1: अच्छा सही है, होता था सारी चीजें।
0: एक नाबीना लड़का था बता रहे हैं, तो वो क्या करता था कि अमल वो 40 दिन का वो चिल्ला करने के चक्कर में लग गया।
1: अच्छा।
0: वो मस्जिद में जाके वो चिल्ला करना शुरू कर दिया, तो एक दिन दो दिन उसे डराए लोग, वो तो देख नहीं सकता था लेकिन आवाज तो सुन सकता था ना, तो एक लकीर
1: लोग डरा रहे थे आगे।
0: जी लकीर खींच के मतलब है, और उसमें बैठता था। अब जब वो बैठा तो इतने खतरनाक आवाज निकाले कि वो निकल के उस लकीर से बाहर भागा इतना मार मारे उसे, इतना मार मारे उसे, मतलब वो दूसरे तीसरे दिन तक दरगाह में नहीं गया।
1: मतलब खैर इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, बाकी बिल्कुल सही
0: बात, हकीकत बात था।
1: सही
0: ये मतलब हमारे जामिया का मतलब बता रहा हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: एकदम मुझसे। तो बाद में उसको इतनी पिटाई हुई ऊपर से कि मतलब कि ये ऐसे ऐसे मतलब कि क्योंकि बच्चे लोग तंग करते थे उसे, तो पता था कि मैं जिन्नों को अपने कब्जे में कर लूंगा, तो जो मर्जी आएगा मैं करवाऊंगा उससे।
1: तौबा तौबा।
0: तो ये सब बहुत आम बात था, उतना मतलब इल्म का लोगों के अंदर इतना कमी था।
1: सही बात है, उसको इतना आइडिया नहीं होता था। सही है सही। चले जी रईस भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। चले बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रई जी, तो हमारे साथ रईस भाई मौजूद थे और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। और आपसे कहना यह है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैं आपको दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूं। बचपन में कोई ऐसा बिलीफ जो कि बड़े होने के बाद आपको लगा हो कि ये तो भाई मैं गलत सोचता था, ये आज आपने मुझे बताना है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं सॉन्ग की तरफ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और मैं एक दफा फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ. 7:28 हो चुके हैं और हम आपसे शेयर करेंगे एक न्यूज. आपको बताती चलूं कि दोहा थिएटर कंपनी ने अपने मकबूल थिएटर प्ले अंडर द रबल की कास्ट और क्रू को 30th दोहा थिएटर फेस्टिवल में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और मुश्तरक मेहनत के एतराफ में ऑनर किया. और ये तकरीब जो है अलमयासा थिएटर में प्ले की कामयाब प्रेजेंटेशन के बाद मुनक्कद की गई, जहाँ इस ड्रामे को थिएटर शायकीन की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ऑडियंस की तरफ बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की थी. और इस रिकग्निशन सेरेमनी में एक्टर्स, टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोडक्शन टीम के तमाम अफराद को उनकी मेहनत और डेडिकेशन पर सराहा गया. दोहा थिएटर कंपनी ने इस बात को जागर किया कि हर कामयाब थिएटर प्रोडक्शन सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं बल्कि पूरी टीम की मुश्तरक कोशिश का नतीजा होता है. और कंपनी का कहना था कि अंडर द रबल ने थिएटर की उस ताकत को दोबारा साबित किया है जो इंसानी जज्बात और समाजी मसाइल को गहराई और मौसर कहानी के ज़रिए पेश करती है. तो ये थी भाई ज़बरदस्त ये अपडेट और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं कहाँ, हम आपके मैसेजेस की तरफ आते हैं. अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हैं? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आरिफ अंसारी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. और जसविंदर सिंह कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड प्रोग्राम. मैडम जी आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाना सुना दूँगी. जसविंदर सिंह काला, कौन सा गाना सुनना है आपने, आप बताएं मुझे, मैं लगा दूँगी. अच्छा जी, इसके साथ ही साथ हम आपको याद कराते चलें कि आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि बचपन में ऐसे कुछ बिलीव्स जो कि बड़े होने के बाद गलत साबित हुए हों तो आप वो हमें कॉल करके बता सकते हैं. अभी काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने बिलीव्स बताए. मुझे आरिफ अंसारी का बड़ा ही मज़े का लगा कि भाई ये बहुत ही बड़ा बिलीव था कि बड़े होके सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो नहीं हुआ. तो खैर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में हम लोग कुछ हमाकत वगैरह में भी सोच के रख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन फिर बड़े होने के बाद वो प्रूफ होता है कि नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है. तो आपने मुझे कॉल करके बताना है. कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 4434377. आप बताइए कि कौन सा ऐसा बिलीव था आपका जिसने आपको बचपन में बिल्कुल मतलब ये इसके साथ जोड़ा हुआ था कि ऐसा ही होता है, लेकिन बड़े होने के बाद आपको रियलाइज़ हो गया कि नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सारी की सारी मतलब ऐसी चीज़ें. तो ये बताइएगा आप मुझे और कॉल कीजिए जल्दी से शामिल हो जाएं, क्योंकि फिर अगर कॉल नहीं करते तो हमारा ये सवाल का सिलसिला ही चल रहा है, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. यही है सिलसिला, मतलब मैं म्यूज़िक चलाऊँगी तो देखते हैं हमारे पास कॉल आती है कि नहीं आती. ईजी है भाई, सवाल इतना मुश्किल नहीं है. मैंने कितनी चीज़ें तो मैंने ही बता दी कि ये बिलीव्स हमारे हुआ करते थे और हम इस तरह की चीज़ों को सोचा करते थे छोटे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके और बिलीव्स बढ़ते मतलब बदलते रहते हैं. हाँ एक चीज़ मुझे और याद आ रही, वो होता था, ये भी एक चीज़ होती थी कि आपके घर पे कोई रेंडमली ना गुलाब जामुन भिजवा देता था और उसके साथ एक पर्चा होता था कि अगर आपने 7 घरों में आज गुलाब जामुन नहीं भिजवाए तो आपके घर पे पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी, कुछ हो जाएगा. तो उसको बंदा डर जाता था, मतलब शुरू शुरू में आपको एकदम से डर लग जाता था कि यार ये क्या है मतलब सीन, अगर नहीं किया आपने ये तो फिर. मेरा ख्याल है मुझे जो बड़े होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कोई हलवाई की दुकान पे कोई बंदा बैठा हुआ था जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए ना ये गुलाब जामुन बंटवा रहा था पूरे मोहल्ले वालों से कि मिठाई लाजमी बंटवाएं 7 घरों में कम अज़ कम, वरना आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: Good morning.
1: Alhamdulillah. Ju?
2: Yes.
1: How are you?
2: Yeah, I'm good.
1: Good, Alhamdulillah. Good. Ji, Ju, kya kehna chahte?
2: Hey, aaj ka topic bachpan se mera father mere ko bahut bolta tha, wo devil monster koi nahi hai, so I'm not believing those things.
1: Okay.
2: Even now, when I was 4 or 5, मेरा father बोलता है वो रात को उधर जाएगा, भूत है और monster है.
1: अच्छा.
2: वो नहीं बोलता है.
1: अच्छा.
2: तो इस वजह से उन्हें डरता नहीं.
1: सही.
2: मैं I was eating watermelon one time. Okay. And I'm consuming with seed also.
1: Okay.
2: तो so, मेरा फादर का कोई बेटी था, वो बोला आप क्यों सीड खा रहा है यार, आप अपडेट में वो जा रहा
1: आ जाएगा.
2: हाँ.
1: सही.
2: तो मैं सोचा ऐसे, फिर मैं पूरा मेरा फादर को जाकर बोला ऐसे बोल रहा है क्या है. फादर बोला ऐसे, फिर वो आके मेरे को बहुत डरा दिया.
1: अच्छा.
2: ये मेरा सबसे वो भी फिर वो जाके बोला अब आपको मैं अप्रैल फूल बनाया वो के
1: अच्छा ये अच्छा था
2: ये बहुत बड़ा मैं उसी दिन आई वाज रियली क्रेजी उस टाइम मैं वॉमिट करने के लिए भी सोचा था
1: ये था कौन जिसने ऐसा किया ये था कौन
2: This, I was in second standard.
1: No. वो कौन था जो आपको डरा रहा था?
2: मेरा father का sister.
1: Ah, okay. फुप्पो.
2: मेरा father का sister. वो दो एक नहीं है दो sister दोनों मेरे को same बात ही बोला.
1: अच्छा सही सही.
2: आप इतना seed खाया आपका पेड़ का ऊपर झाड़ आता है ऐसे बोल के बहुत मेरे को डरा दिया.
1: You must say
2: but some hopes I believe because dono ek hi baat bol rahe hain
1: ha
2: so I don't know I believe that those such things फिर मैं grow up होने के बाद दो तीन साल होने के बाद मैं साइंस थोड़ा पढ़ता हूँ फिर मैं ऐसे कुछ नहीं है
1: फिर पप्पो को आपने बोला ये क्यों बोला था बोला उनसे
2: सॉरी
1: फुप्पो से पूछा हा? भाई ये क्यों बोला था ऐसे क्यों बोला था मेरे बचपन में
2: नहीं मैं उसके पास उसको आगे नहीं पूछा
1: नहीं पूछा
2: मैं, नहीं पूछा वो के उसके फायदा नहीं क्या मैं ऑलरेडी मेरे को डरा दिया
1: हाँ इट्स फनी जबरदस्त ग्रेट और जो और बताएं और सब सही है सुबह कैसी हुई आपकी
2: हाँ इट्स गोइंग गुड स्टार्टिंग आवर ड्यूटी
1: जबरदस्त चलें जी अजू थैंक्स अ लॉट अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बहुत मजे के किस्से सुनाए आपने थैंक यू जी थैंक यू ख्याल रखिएगा आपने थैंक यू जी अल्लाह हाफिज रोहित जी तो हमारे साथ अजू और मजे का था ये वाला बहुत थैंक यू अगर आप वाटरमेलन के बीज खा जाओगे तो आपके पेट में पेड़ निकल आएगा ये अच्छा है ये देखिए ना मतलब बहुत सारे बड़े ऐसी इस किस्म की बातें वो भी अपने तौर पर मजाक में डराने के लिए कर रहे होते हैं लेकिन बात होगा तो बड़ी फनी होती हैं आप जब बड़े होते हो तो आप रियलाइज करते हो भाई ये क्या था ये क्या सीन था ये क्यों बोला गया फिर जी सिद्धू मूसे वाले का गाना सुनना है जसविंदर सिंह काला ने वो भी मैं चलाती हूँ और उसके अलावा आपके लिए एक और गाना प्ले करते हैं सुनते रहें FM 107 दिल से देसी

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

सियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से समात कीजिए आज का पहला नशरिया इस्माइल खान की ज़ुबानी। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि साहिब सुमू अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी आज बरोज़ इतवार बातारीख 27 मुहर्रम सन 1448 हिजरी बामुताबिक 12 जुलाई 2026 की सुबह वफात पा गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी वसीतर रहमतों में ले और अपनी मग़फ़िरत से नवाजे। अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा और सालहीन के साथ अपनी वसीतर जन्नतों में जगह अता फरमाए कि वो बेहतरीन साथी हैं। उन्होंने अपने वतन और अपनी अरबी और इस्लामिक उम्मत के लिए जो हमेशा याद रखे जाने वाले अजीम काम सर अंजाम दिए हैं उन पर उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का मुफसल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावन नूर और न्यूज़ स्टूडियो से इस्माइल ख़ान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم